0: Hi, Judy. Aren't you trying this? It's very nice. Have more. Hi, Sherman.
1: Hi.
2: आप खाना क्यों नहीं खा रहे?
3: जी नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ।
0: डाइटिंग?
4: लगता तो नहीं।

गुलाबी रात के साए तले इन मासूम बच्चों की रात कितनी भयानक है, कितनी काली है।

उस देश का बचपन भूलता हो, फिर उसकी जवानी क्या होगी, फिर उसकी जवानी क्या

जब भी देश की बात होती है ऐसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ये लोग जो पीते हैं वो शराब नहीं, अनगिनत लोगों का खून है। और आज जब बच्चे भूख से पिलकते हैं तो ऐसे लोग अनाज पांव तले कुचलते हैं। ऐसे फूल इनके हाथों कुचले जाते हैं, मसले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें तन ढकने का शौक नहीं। ये गुलाबी रात वाले काली रात के जिम्मेदार शबाब और शराब के नशे में चूर। मखमल के बिस्तर पर सोने वाले इतना भी नहीं सोचते कि आज इन्हीं की रक्षा के लिए इनके अपने भाई

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

0: हिंदुस्तान का तेरा तू।
1: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

है कुछ, इकहत्तर हाथ के 100 टुकड़े जिगर हैं। रोती है कुछ, इकहत्तर हाथ के 100 टुकड़े जिगर हैं। एक एक बिन

रेत सरे शाह नहीं है, गर्दू पे जमी है, ये कुर्रतुल्लैनैन मोहम्मद का जिगर है, दहरा का

0: Great song, wat een geweldig liedje was dat ook weer van Javed Lee, waar we mee van start zijn gegaan.
1: इंसान किसी को पाने के लिए नहीं बस उसकी एक झलक के लिए जीता है
0: so is that
1: और मेरा दिल आज भी सिर्फ तेरी तलाश में है
0: वाह वाह वाह दिल को तेरी तलाश है Goedemorgen Nederland, fijn dat u allen bent afgestemd op your favorite radio station.

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। आज शुक्रवार 7 अगस्त का प्रोग्राम आप लोग सुनने को जा रहे हैं। हमसे पहले प्रोग्राम को बना रही आरजे दंकेवेल, एक वेंस जाऊं फाइन दाग फाइन वीकेंड टू गवेंस। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप रे को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप रे की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए।

Keribin 15 minuten bij het Hachikol in Obachkar, 15 minuten over 9. Goedemorgen. Apriko Shubdi. मैं हूं सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वहां तक हम आप सभी को आज सुबह का प्रोग्राम में प्यार से दुलार से स्वागत कर रहा हूं। चाहे यहां पर आप हमें सुनते होंगे दिन में 12 बजे तक आप लोग हमें सुन सकेंगे और कुछ मिलजुले संगीत से आप सभी सुनने वालों को हम खिदमत करने वाला हूं। उजाला रेडियो का दफ्तर आज सुबह में 10 बजे से खोले जाएंगे शाम में 3 बजे तक। यहाँ का फोन का नंबर है 020-409-0807 पर आप लोग तार कर सके या तो जाइए उजाला के वेबसाइट पर www.ujala.nl या तो आप ईमेल भेजाइए info@ujala.nl पर। और हमारे प्यारे सुनने वालों अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 020-363-0808 पर। यावेल 020-363-0808 पर। चलिए प्रोग्राम को हम आरंभ करते एक सुंदर सा भजन सरस्वती माता का भजन जो आप लोग सुनेंगे आप सभी श्रोताओं के लिए पेश है।

और इस तरह से ये सुंदर सा सरस्वती माता का भजन जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, हमारे प्यारे सुन बोलो उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, आज शुक्रवार 7 अगस्त का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, और दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं खुद मोरखलमा। चाहे यहाँ पर आप लोग प्रोग्राम को सुनते होंगे, सुनते ही जाइए दिन में 12 बजे तक। देखिए नदियाँ वरकसैन वरक सलमाओ ग्यारह, आप लोग कौन बैठ करते होंगे चाय या तो कॉफी के साथ, तो स्वादी से भोजन कीजिए ब्रेड पिंडा काफी।

अरे यार चुपके से कोई आएगा एंड फिर मेरे नींदे उड़ाएगा एंड रात भर जगाएगा। यार यही मजा है प्यार में, चुपके से कोई आएगा। उदित नारायण एंड अलका याग्निक जी के आवाज़ में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, आपकी बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो गाना जो है तो इस तरह से आप लोग सुनेंगे। और ये गाना पेश है संद्रा के लिए प्यार एंड मोहब्बत के साथ। गाना सुनिए, दिल से तुझको चाहा या बेल एंड यू आर उजाला रेडियो।

दिल से तुझ को चाहा है। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुने वालों। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए प्रोग्राम को सुनीता भी प्यार के साथ बैठ कर सुन रहे, तो ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ प्यार के साथ।

तो कुछ भी नहीं। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने अरिजीत सिंह जी के आवाज में और उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं खुद मोर खालमाओ। वेल वीकेंड शुरू हो गई है, इट इज फ्राइडे वंदाग या वेल। और का पकाओ खोया चैन मत खाओ वंदाग एटन। वट बेंट यू एन इट क्लार माकन यार या वेल फ्रुकू फ्रुकू।

0: बस वही कहानी दोहराती है।
1: मैंने तुझे भूलने की लाख कोशिश की, लेकिन हर धड़कन में

वेल वेल यार, मुझे मुझे ना भुला बस तू मेरे पास आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। वेल करीबन दो मिनट बाकी रहा 10 बजे में नाद ब्रेक नाद रखलाम बेनक मित्र यार एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम भी इस के देशहर में लीना रामेश्वर भी प्रोग्राम को सुने खुद मोरखे गुड मॉर्निंग एंड यू आर उजाला रेडियो दी हॉट वन दी बेस्ट वन आपकी शहर में

जला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों। आज शुक्रवार 7 तारीख अगस्त का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं और हम आप लोग के साथ दिन में 12 बजे तक देने वाले हैं। एक बंदर तो फिर और उजाला रेडियो का दफ्तर भी खोले गए हैं जहां का फोन का नंबर है 020 3 या 020 4 09 08 07।

करते हैं बहुत मगर फिर भी तुमसे मैं क्या करूं, एंड लेकर बाहों में तुझसे प्यार करता रहूं। और इस तरह से बापू सुप्रियो एंड अरुणा के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। वेल वी कैन से यार चलन दे हमार मसनिया भैया।

वेल शाबाश शाबाश हमार मसीनिया वेल हमार मसीनिया यार और इस तरह से द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह सेवना जी और देखा जाए पहली बार अवतार भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं गुड मॉर्निंग एंड यू आर उजाला रेडियो द हॉट वन एंड द बेस्ट वन आपके शहर में

बोलो एक बार क्या मेरा प्यार तुम्हें पसंद है। आई बॉय एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं आज शुक्रवार का प्रोग्राम है। इट्स बीन अ वीकेंड और मोई वेर या वेल और देखा जाए ब्रेडा शहर में परिवार बिहारी भी प्रोग्राम को बैठकर सुना है। And fans of all the Mila.

0: पूरी तरह से नदीम खान जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, मैं प्यार करूं तुझे हरदम, मैं तुझे प्यार करूं हरदम। I'm you are उजाला रेडियो,
1: लबों से नहीं मिल।
0: अच्छा इस फ्राइडे सेफ और खुश तस बैना वीकेंड यार।
1: और जब मोहब्बत सच्ची हो तो पूरी जिंदगी उसी नाम की हो जाती है।
2: लोग कहते हैं वक्त सब बदल देता है, लेकिन मेरा दिल आज भी तेरा ही नाम लिखता है।

एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं और देखा जय मानो भी प्रोग्राम को बड़ी करके सुने हैं और गाना मांग के अपने सुनू से के लिए प्यार एंड मोहब्बत के साथ खुद मोरखे

जब जब दिल मिले तो हर एक धड़कन तेरे दिल में मिले, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग मिले, और बोले चांद भी मुस्कुराने लगा जब भी तुम मिले। और दिल न तुलक बैठ करके झूमे, जब भी तू दिल में मिलता है तो दिल हमारा झूले झूले, एंड यू आर भी झूले लगे हैं दिल के साथ।

तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने आजकल तेरे मेरे चर्चे हर जबान पर एंड सबको मालूम हो गई, सबको खबर हो गई। देखा जाए बॉय का बिल्डिंग में भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मूर्ख राहत फतेह अली खान के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे यू आर उजाला रेडियो पर।

वेलियर तेरा ही नूर औसरा सी राहत फतेह अली खान की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने हमारे प्यारे सुनने वाले ठीक 11 बजने वाले हैं। नाद ब्रेक नाद रिक्लाम बेने ब्रेक के उस पार फिर हम आप लोग से मिलते हैं।

inmiddels 11 minuten over 11. Aure hamari pyare sunwalo brasa mela ke liye aap taiyar ho jaiye. Het is bijna zover jaar brasa mela. Aap apni pehli baar दोस्तों के साथ आइए बड़ा सा मेला पर खूब घूमिए खूब मौज कीजिए बड़ा सा मेला इंदौर हर एक जानकारी आपको मिलेगा बड़ा सा मेला पे चैनल पर ओके चलिए गाना की ओर है लास्ट यूज या वेल लास्ट घंटा इतना हल्दी दोन हो जाए और देखा जाए दीमन शहर में फौसिया भी प्रोग्राम को बड़ी कर सुने खुद मोरख और ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ

लाल तेरी एक झलक से नजर तेरी ढूंढती है, तेरी एक झलक पाने को। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, हमारे प्यारे सुने वालों, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो इस गाना को मांग करने वाली, गाना को पसंद करने वाली है फैंस सपोल्डर में एमी जी के लिए गाना पेशा, मुझे इश्क है तुझी।

जब जब बहार तुम आए और तुम मुझे याद आए, इस तरह से विम डमड़ी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं।

कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने बापू सुप्रियो के आवाज में, बोले मैं जानता हूं तू गैर सही है फिर भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

स्तरों से अभी जीत के अवांश में गाना जी प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे पल पल दिल के पास तुम रहती हो एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम भी इसके फिर शहर में श्रीमान लक्ष्मण भी प्रोग्राम को बैठकर सुन खुद मूर्ख

तेरे बगैर और इस तरह से मरूम शहीद वागिद हुसैन के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। करीबन 20 मिनट बाकी रहा 12 बजे में यवाओ कितना हल्ली टेमो आया है। चलिए प्रशांत राम जतन के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे।

कहाँ कहाँ उड़ चली ओ मेरी हंसनी। आई सरो से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने प्रशांत राम जतन के आवाज में, और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे, देखा जाए अम सलम सहित उसमें रोबी प्यूरबेक्स भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मूर्ख। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ हम देने वाले हैं, थोड़ा देर तक।

राव बलियार मैना भूलूंगा आयुषर श्री संजय योद्धा जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम और देखा जाए करीबन आठ मिनट बाकी रहा 12 बजने में। वेल टेमो कितना हल्दी दोन या वेल हेट इज फॉर बाय।

आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने बाहों के दरमियान एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम भी खास करके हमारे भाई रॉबी रोजन बहुत ही बड़का ग्रुप के साथ बैठ करके प्रोग्राम सुने। तो भैया रॉबी जी ये गाना आप लोग के नाम चाहे जहां पर आप लोग बैठे होइए मुझसे सुनिए गाना।

ई हमार मसिनिया, हमार मसिनिया ना जाने का करवावे है। और हमारे प्यारे सुने लो, यहाँ तक आज का प्रोग्राम जो आप लोग सुने, हमारा साथ देने के लिए, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुने वालों को बहुत बहुत

और ये शख्स है, ये शख्स है शिवम राजाराम नटराज के साथ. एंड शिवम राजाराम इज ओक अवेजिंग ऑफ ब्रासाफेस 29 एंड 30 अगस्तस. सो मीटिंग द हेडलाइंस फॉर वंडा अब याप सुन लेना उजाला रेडियो के जरिए. एंड नेचुरली हैव आई लुchtige onderwerpen samen met Anand Chandrika Singh. Shivam Rajaram.

चलिए प्रोग्राम में निजाम वागी डिजाइन की आवाज में हम आपको सुनाने को जा रहे हैं निजाम वागी डिजाइन ओक आवेशक में द लेजेंड्स op Brazzaverse 29, 30 augustus. Het wordt die zaal, Hotel Den Haag GIA Event Center. Koop je tickets via Brazzaverse.nl.

0: या अदमिया भी आए गए छा आज तनी कपड़ा पड़ा पहन के आयल है गया फोलेद कपड़ा पहन के आ रहे वहां तो वीरवा तनी ठंडा है गया या घमोद ना तेज ना है गया दिस आर्मी सी इज बेटर gekleed vandaag.
1: Jazeker.
2: Rahe na rahe, chahe hum.
0: Rahe na rahe, chahe hum aur tum, Anand, hai?
1: No. तो दुनिया कैसे चलेगा लोग हम और तू न रह भेजा तो दुनिया भी प्रलय हो जाएगा दोन खत्म
0: प्रलय प्रलय बड़ा मुइलक वर्ड तू बोले तनी फुटकड़िया में तो बता दे प्रलय के मतलब कुछ है क्या है प्रलय
1: छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे बहुत फॉर्मेल हो जाएगा नहीं बस सुना कपड़वा फॉर्मेल कपड़ा के बोलल जाएगा लोग
0: या
1: किस तरह वो तो फरखात netjes पहन सकेगा स्लॉर्दक वत वत वत स्केच में फरमासिंग जैसे हम लोग बतियाली डायरेक्ट दानना इस आर्टिकल गकोमा इन द मीडिया
0: अच्छा
1: या
0: ओकर कौन सी बारे में की
1: ओवर क्लेडिंग ऑफ द
0: वर्क फ्लोर की कैसे चाहे पहने के कौन कपड़ा पहने वनी वर्ड यू सीरियस गनोम वरिंग वनीर इज इट
1: या एसोसिएशंस नंबर etiketten kaise chahiye rahe ke
0: ja inderdaad
1: over heel groot over direct jaise hum log bolle
0: want
1: tegenwoordig
0: wij maken nieuws
1: hai direct samne meteen opgepikt in na het toeval hum toeval mein na vishwas karela hum log bachi aili baat hi coffee and chai and samne meteen opgepikt dekh
0: to
1: bakra bahut chalak rahe ga log
0: hum log kahe bole bakra dong hai mai so chalak bhi ho jaye
1: bahut chalak
0: jaate hai hum log se chalak ho jaye
1: ab hum log karela us sab ke chalak देखे तो चलाकी नहीं कपड़वा कपड़वा तो इस बलंगराई का लॉयड लॉयड कलियां हम लोग बोलत रही ये मुत अन डोंकर ब्लाउ ऑफ ऑफ स्वार्थ है कॉलर पाक पहनने चाहिए द वॉच इज सीरियस गनोमा दिस अल सन अलले ऑन द सुक गवे स्कैनलक जो हम लोग ना जानी ला मैं खान हाथ खराब दे ले ये कि कोरोना समय जो आइल बा is er heel veel veranderd tijdens corona.
0: Ja.
1: Mensen werden informeler, dus gingen informeler werken met elkaar. कोई कोई इतनी घर कर रहा कोई कोई इतनी बे कंतोरो जात रहा तनी मनी मनी हेल फिल मेयर दो शिक्रे हेल फिल टीम्स वर्गादरिंग है और कैसे बोले यार ऑनलाइन चीज वन
0: या
1: बच्चा कार कुन सीन ओक
0: इस दार बखोन कि हम लोग का बोले दूसर कपड़ा पहन के जाने काम पे
1: दैट ऑंडरसुक गिव आन दैट इट दैरडोर अन फ्लुक्ट हैव गनोमे
0: या
1: मार आई गा यू नो इट्स वर्टेलन आई हैव माय पैक आन देख इस साइड बाय फॉरबिल्ड मार आई हैव वेल गोन गिम्प द अंडर है
0: Ja, maar ja, dat kan ook. Dat kan allemaal.
1: Vroeger was dit onvoorstelbaar.
0: Ja, was not done, hè?

मुंड संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

शोला बदन पहलू में आ जाओ। फिल्म गुमनाम का गीत और गीत के गाने वाले शारदा एंड मोहम्मद रफी साहब, उजाला रेडियो का प्रोग्राम

मुझको तुम जो मिले, हाँ मुझको तुम जो मिले तो ये बहार समझो मिल गया। और गीत के गाने वाले हेमंत कुमार जी के साथ गीता दत्त और फिल्म डिटेक्टिव से निकाला हुआ।

और ये शख्स है शिवम राजाराम नटराज के साथ एंड शिवम राजाराम इज ओक अवेलेबल ऑन ब्रासा फेस 29 en 30 augustus. Zometeen de headlines van vandaag. Abia Sulina, Ujala Radio is erin. En natuurlijk heb ik luchtige onderwerpen samen met Anand Chandrika Singh. Shivam Rajaram.

मून ने संस्कार होने वाला है पूजा लड़ेगी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Voormaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे और तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे। फिल्म हाथ की सफाई का गीत और गीत के गाने वाले किशोर कुमार एंड लता जी, और ये उजाला रेडियो है। एक और गीत आप सुनेंगे अब प्रोग्राम में, अमित कुमार एंड अन्नू राधा पौडवाल से।

उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंद नाउ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

और ये शख्स है शिवम राजाराम नटराज के साथ एंड शिवम राजाराम इज ओक अवेलेबल ऑन ब्रासा फेस 29 en 30 augustus. Zometeen de headlines van vandaag. Abia Soelina, Ujala Radio is hier. En natuurlijk heb ik luchtige onderwerpen samen met Anand Chandrika Singh. Shivam Rajaram.

सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मदगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा आएगा ओ आएगा, ओए जरनल सिंह ओए जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।